ओम से हुई पांचों तत्वों की उत्पत्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।

मैं हूँ विशाल आकाश, असीमता ही मेरा गुण, भरता अपने में उच्च विचार, रखो हमेशा स्वच्छ मुझे, करो सब मिलकर एक काम, अच्छा सोचो अच्छा सुनो और मुख से लो अच्छे नाम, होगी बरसा प्रभु कृपा की, डर की ना होगी कोई पुकार, मुझे रखोगे अगर स्वच्छ सुपोषित तो हर लूंगा मैं सब विकार, तो हर लूंगा मैं सब विकार।

समस्त जगत की प्राण वायु झुलसाने वाली गर्मी में वातावरण को मैं शीतल बनाऊं, ना करो मुझे प्रदूषित, ना करो मुझे प्रदूषित। अगर चाहते हो खुशहाल जीवन तो चलाओ वृक्षारोपण अभियान, गुण है मेरा शीतलता, जीवन देना ही मेरा काम, जीवन देना ही मेरा काम।

मैं हूँ तेजोमय प्रकाशमय, मेरी है अमित पहचान, अंधकार है शत्रु मेरा, ये डर जाए देख मान, प्रकाश ही है मेरा जीवन, मृत्यु है अंधकार, मैं देता ऊर्जा सबको, प्रसन्नता देना मेरा व्यवहार, देवताओं तक पहुंचाता मैं तुम्हारे यज्ञ विचार, करो सदुपयोग मेरा मानव, ताकि जीवन बने खुशहाल, ताकि जीवन बने खुशहाल।

मैं हूँ जल, सेवा है मेरा धर्म, निर्मल है मेरा मन, शीतलता देना मेरा कर्म, रखिए जलीय चक्र संतुलित, मुझे ना होने दो प्रदूषित, करो मेरा सम्मान मानव, मैं दूंगा तुम्हें जीवन अतुलित। साई ने चलाकर जल अभियान दिया, मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान दिया, मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान।

0: वहन करती मैं भार समस्त सृष्टि का, मुझे ही कहते हैं धरा। करो समर्पित जीवन अपना, मैं ही हूँ भू भूमि धरा वसुंधरा। न मांगू मैं मानव तुझसे कुछ भी, पर तू ना कर मेरा तिरस्कार। कर सेवा मेरी माँ की तरह, क्योंकि मैं ही देती तुझे ढेर सारा प्यार। मत भूल तो मानव भारी और ऊंचे पर्वत भी विश्राम मुझी पर पाते हैं। लंबी और बलवती नदियाँ मुझ पर ही होकर बहती है। ऊंची मीनारे विशाल भवन सभी खड़े हैं मेरे ऊपर। जीवनदायी फसलें भी सब उगी हुई है मेरे ऊपर। और ये क्या आज मेरी ऐसी अवस्था, जो तो पूछता है मुझे तो कर रक्षा मेरे इस प्रदूषण से। रख मुझे स्वच्छ सुशोभित लदी हुई पुष्पों फलों से, लदी हुई पुष्पों फलों से।
1: पर ये क्या मानव सृष्टि का सरताज, अपने मानवीय मूल्यों सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा को भूलता जा रहा है। पंच तत्वों का महत्व, इनकी पवित्रता एवं स्वच्छता पुरातन काल से चली आ रही है। इनकी महत्वता का वेदों में भी उल्लेख है, शास्त्र में भी इनकी व्याख्या है। माना ऋषि मुनियों भी देव तुल्य इन पांच तत्वों को निस्वार्थ भाव से की इनकी आराधना और सेवा, फैलाया चारों दिशाओं में इनकी महिमा को। पंच तत्वों का संबंध सिर्फ प्रकृति से ही नहीं, अपितु हमारे शरीर से भी है। हमारा शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश का गुण है शब्द, शब्द सुनते हम कानों से। वायु का गुण है स्पर्श, और स्पर्श करते हम त्वचा से। अग्नि का गुण है शब्द स्पर्श और रूप, जो देखते हम नेत्रों से। जल का गुण है शब्द स्पर्श रूप और रस, जिसका पान करते हम जीवा से। पृथ्वी है परिपूर्ण इन पांच तत्वों से, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जिसका अनुभव करते हम नासिका से। कितना सुंदर संबंध इन पांच तत्वों का हमारे शरीर से। पर ये क्या कलयुग के प्रबल प्रभाव से, कलयुग के प्रबल प्रभाव से।

मैं हूँ कलियुग, सत्य त्रेता द्वापर युग के बाद आज संपूर्ण संसार में मेरा ही राज है। समय समय पर करता हूँ मैं अपना ही बोध। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल और पृथ्वी सब मेरे ही है सेवक। ये मानव मेरी कठपुतली है, इनकी इच्छाएं मेरे हाथ में, मैं ही छाया चारों।

अब समझो आप, प्राकृतिक आपदाओं का कारण है मानव का लालसा, स्वार्थ और तृष्णा। अगर रखता मानव खुद पर संयम तो पृथ्वी पर ना होती भौगोलिक उष्णता, जलवायु परिवर्तन और युद्ध।

0: तो दम घुटा जा रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही। युद्ध से सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। कहाँ जाएं, चारों तरफ धुआं धुआं, आग की लपटें, बड़ी बड़ी मंजिलें गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, पानी भी पीने लायक नहीं है, रासायनिक पदार्थों से पानी भी प्रदूषित हो गया है, अब हम कहाँ जाएं?
1: क्या बात है पुत्र, इतने परेशान क्यों हो?
0: क्या बताएं महाराज, इस पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया है।
1: शांत हो वश, शांत हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान मैं बताता हूँ। ये सब मनुष्य के कर्मों का ही फल है। मानवता का अगर कर्ता पालन, भरा हृदय होता प्रेम और करुणा से,

भगवत सत्ता पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, जिसका अनुभव हम अपने चारों तरफ करते हैं। चेतन शक्ति सब प्राणियों में है, तभी हम कहते हैं कण कण में भगवान हैं।

0: नहीं
1: अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य है, सत्य के कारण ही वायु प्रवाहित होती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं।
2: वही परम सत्य श्री सत्यसाई अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब हम पंच तत्वों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक अलौकिक प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। यह हमें वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त करने में सहायता करता है।

महाराज, अब आया हमारी समझ में प्रकृति का गुण ज्ञान। लेते हैं हम सब संकल्प, करेंगे ना तत्व को दूषित और करेंगे इनका संरक्षण और सम्मान। यही होगा भगवान श्री सत्य साई के प्रति हमारा प्रेम निवेदन।

0: are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Salok Mahalla Tija अबे आगते हैं ना याखियानो जिनके चित में परम तिस दैदते नानका ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन

अभ्यागत है ना आखियान जे पर कर भोजन करे ना उदर कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक

नाम जपे नामो वारादे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाहीं किसे आग सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब श्रिष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए भाणै चलन अपणै नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप

शास्त्र वेद न मान कोए, आपो आपै पूजा होए, काजी होए कै बह न्याए, फेरे तस्बी करे खुदाए, वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछै ता पढ़ सुनाए, तुरक मंत्र कन हृदय समाहे, लोक मुहावे चाड़ी खाहे, चौका देके सुचा होए, ऐसा हिंदू वेखो कोए, जोगी गिरही जटा बिभूत, आगै पाछै रोवै पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई, नानक कल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान, महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै, सूत जनेऊ पढ़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई, विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथे को जाए, करनी बाजाओ पिस्त न पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई, तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार, जिथे किथे सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ, चीरी आई ढिल न काऊ, एथे जाने सो जाए सजाण, होर फकर होर फकड़ हिंदू मुसलमान है सब न

बोलै चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मैं रूपै थम अहन से अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान बोलै परथर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे समकर रह ता नानक आखे गुर को कह छे वरतारे वरत पूत ना संसारी ना ओ दूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माण है सदा दुख दुखी मैं रहना अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपै

राम होत चसा तिस बिन ना सरै, अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनों बल तरै, जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवां, तन सो राग सुरंगड़े, अलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े, जो गुरमुख जपदे नाउ। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सदबलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे, करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै, हौ सदब